नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत की राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावना

0: बनाए हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. Describing the welcome as deeply touching, PM Modi said he looked forward to holding discussions with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by the Samanvay group comprising Indonesian students. After receiving a warm welcome from members of the Indian diaspora at his hotel, the Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Quilt Shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the Triple Gem. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakravarti, said that Prime Minister's visit to Indonesia is set to mark a significant upgrade in India's strategic partnership with Southeast Asia's largest economy. He said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
3: India and Indonesia are very close and strategic partners.

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 7:00 लेकर आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ। सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
0: जी हाँ, सुहानी सुबह है प्रोग्राम का नाम और 100.1 FM गोल्ड खरा सोना में आप सुन सकते हैं ये कार्यक्रम और मैं पापिया हूँ जैसा कि कहा आपको। और चलिए दिन की शुरुआत आज करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो लिए हाथ में एक प्याली चाय की, हो जाइए रेडी। दोस्तों, कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती थी और उसके अवसर पर पश्चिम बंगाल में ये घोषणा की गई कि अगले शैक्षणिक सत्र के स्कूलों और विश्वविद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में उनके जीवन और योगदान को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव के अनुसार विद्यार्थी को डॉक्टर मुखर्जी के शिक्षा, उद्योग, राष्ट्र निर्माण, अखंड भारत की अवधारणा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान से परिचित कराया जाएगा। अंतिम निर्णय संबंधित पाठ्यक्रम समिति द्वारा ही लिया जाएगा वैसे। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महान राष्ट्र निर्माताओं में से एक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा, उद्योग और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। चलिए अब चलेंगे दूसरी खबर की ओर, पर भाई सुबह सुबह एक गाना हो जाए तो कैसा हो। चलिए सुन लेते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गाना।

इस जबरदस्त गाने के बाद चलिए बड़े दूसरे खबर की ओर। दोस्तों, भारतीय नौसेना को इस शनिवार एक और बड़ी ताकत मिलने जा रही है। विशाखापट्टनम में स्वदेशी तकनीक के निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेंट महेंद्रगिरी F-38 को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा और यह प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है। छठा स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस युद्ध पोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया, जबकि इसका निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया। पूर्वी घाट के महेंद्रगिरी पर

0: वर्तमाला के नाम पर रखे इस युद्धपोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूत करता है। आधुनिक डीजल और गैस प्रोपल्शन प्रणाली से लैस ये फ्रिगेट लंबी दूरी तक तेज गति से संचालन करने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि महेंद्रगिरि भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता को और मजबूत करेगा और हिंद महासागर क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में भारत की सुरक्षा भूमिका को भी मजबूती देने वाला है। तो सुबह से कई सारी यानी दो दो खबरें हमने बताई आपको और दोनों काफी प्रेरणादायक या फिर आनंद भरा या फिर जो भी कह लीजिए खुशी देने वाला है। अब सीधे चलते हैं क्रिकेट की ओर, जहां पे भी एक अहम खबर भाई सामने आई है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इस महीने जिम्बाब्वे दौर के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। ये दौरा 30, 25 और 27 जुलाई को खेले जाने वाले 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का होगा और सभी मैच हरारे में खेले जाएंगे। इस टीम के कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के दौरे के लिए टीम में जगह नहीं मिली। वहीं तेज गेंदबाज यश ठाकुर और आशीष शर्मा को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह को पहली बार टीम में मौका मिला, जबकि तेज गेंदबाज मयंक यादव की टीम में वापसी हुई है। उधर 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों के वनडे श्रृंखला के लिए चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे की टीम में शामिल किया गया है। इस श्रृंखला में टीम इंडिया की कप्तानी शुभम गिल करने वाले हैं। तो क्रिकेट के प्रेमियों के लिए ये थी खबर, और आगे बढ़ते हुए रेल यात्रियों और रेल में जो सफ़र करना पसंद करते हैं उनके लिए भी एक और अच्छी खबर है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नादेर स्थित हुजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही टनकपुर पिलभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक भी किया गया। रेल मंत्री ने भी कहा कि ये नई ट्रेन उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरी करेगी। अब चलिए खबरों के सिलसिला तो हमारा कायम है, पर एक और खबर चलिए दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हुए सुन लेंगे हमारा अगला गीत। तो अगली खबर ये है कुछ कि जनजातीय विकास से जुड़ी एक अहम खबर हमारे सामने आई है, वो जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी TRII को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण ट्राइबल एक्स नामक एक नए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी, और ये मंच जनजातीय कला संस्कृति भाषाओं पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित अपनी तरह एक पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो सुबह सुबह जो मेन हेडलाइंस थी, मेन खबरें हमने सुन ली, और काफ़ी ज़्यादातर खबरें जो हमने सुनी वो काफ़ी प्रेरणादायक रही। फिलहाल चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार सुनेंगे फिल्म चुपके चुपके से किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज़ में हमारा अगला गीत।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं, और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अरे बस बस बस बस, कहाँ पे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
2: ये बात है
1: तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

సారేగామా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సారేగా మామ సారేగా సరే మా మగాడేసా సారేగా మామ సారేగా సరే మా మగాడేసా మగాడేసా మగాడేసా మగాడేసా మగాడేసా మగాడేసా चलिए दोस्तों अब इस मस्त से गीत के बाद सुन लेते हैं हमारा आज का जो वेदर फोरकास्ट है उसके बारे में। जी हाँ, वेदर रिपोर्ट हमारे मेरे हाथ आ चुका है और अलीपुर मौसम विभाग के हिसाब से आज भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की गुंजाइश है, साथ ही साथ बादल गरजने की भी गुंजाइश है। तो बाहर निकले तो डेफिनेटली बिल्कुल रेडी होकर निकले, छाता रेनकोट सब कुछ अपने साथ रखिए अधिकतम से, और वही अधिकतम तापमान जो है आज 31 डिग्री सेल्सियस रहने की गुंजाइश है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें पिछले 24 घंटों की तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान रहा 27.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वही अधिकतम नमी रही 96% और न्यूनतम नमी रही 86%। और बात करें कल के बारिश की तो भाई बारिश 20.9 मिलीमीटर तक हुआ है और साथ ही साथ मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी भी आ गई है हमारे पास। वो है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा तट के समुद्री इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जो कभी कभी 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। फिलहाल इतना ही मौसम का हाल, और बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना बिल्कुल न भूले। जैसे कि कहा आपको, सुरक्षित रहे और मुस्कुराते रहे और सुनते रहे 100.1 FM गोल्ड। बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं खूबसूरत फिल्म से आशा भोसले अशोक कुमार की आवाज में पिया बावरे, उसके बाद सीधे चलेंगे आज के इतिहास की ओर।

तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे सुहाने सुबह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं आज का इतिहास। जी हाँ, 7 जुलाई का इतिहास, क्योंकि हर एक दिन छाप छोड़ जाता है अपने इतिहास के पन्नों पर क्यों है, चलिए जान लेते हैं 7 जुलाई का दिन इतिहास के पन्नों पर इतना खास। चलते हैं सबसे पहले 1896 की ओर। जी हाँ, 7 जुलाई 1896, 1896 भारत सिनेमा की पहली सार्वजनिक स्क्रीनिंग हुई थी। जी हाँ, आज के इतिहास में बात सबसे पहले उस दिन की जो भारत ने पहली बार चलती हुई तस्वीरों का जादू देखा। 7 जुलाई 1896 मुंबई के वॉटसन होटल, जहां मौजूद लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उस दिन फ्रांस के ल्यूमियर बंधुओं की 6 छोटी छोटी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। टिकट की कीमत थी 1 रुपए, जो उस दौर में काफी बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन लोगों की उत्सुकता इतनी थी कि टिकट हाथों हाथ बिक गए। जब पर्दे पर पहली बार चलती हुई तस्वीरें दिखाई दी तो दर्शक आश्चर्य से भर गए। किसी ने इसे जादू कहा तो किसी ने विज्ञान का करिश्मा। अगले ही दिन अखबारों में इसे सदी का चमत्कार

तक लिख दिया। यही वह क्षण था जब भारत में सिनेमा की नींव रखी गई। इसके बाद कोलकाता के हीरालाल सेन ने शुरुआती फिल्म प्रयोग किए, एचएच भाटवेकर ने भारतीय घटनाओं को कैमरे में कैद किया और फिर आए दादा साहेब फाल्के। उन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाकर भारतीय फीचर फिल्मों का नया इतिहास रच दिया। आज भारतीय सिनेमा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म उद्योगों में गिना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी दिन यानी कि 7 जुलाई 1896 को जब कुछ मिनटों की 6 फिल्मों ने करोड़ों सपनों की दुनिया की पहली ईंट रखी थी। अब चलेंगे अगले इतिहास की ओर, एक अगली घटना की ओर, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी घटना है। वो है आज ही के दिन 1928 में 1928 में स्लाइस्ड ब्रेड की शुरुआत हुई थी। डिटेल में जानेंगे पर सुन लेंगे उससे पहले एक गाना।

तो चलिए दोस्तों, जैसे कि वादा किया था आपको कि इस गाने के तुरंत बाद बताऊंगी कि आज के इतिहास में एक ऐसी खोज के बारे में जिसे दुनिया की रसोई बदल दी थी। जी हाँ, 7 जुलाई 1928 जिस दिन पहली बार बाजार में पहले से कटी हुई यानी कि स्लाइस्ड ब्रेड बेची गई। आज ये सामान्य बात लगती है, लेकिन उस समय लोगों को हर बार पूरा ब्रेड खरीद कर घर पर चाकू से काटना पड़ता था। इस बदलाव के पीछे थी अमेरिकी इंजीनियर ओटो फ्रेडरिक रॉडवेडर की। उन्होंने वर्षों की मेहनत, आर्थिक परेशानियों और यहाँ तक कि अपनी फैक्ट्री में लगी आग के बावजूद हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो ब्रेड को बराबर स्लाइस में काट कर तुरंत पैक भी कर देती थी। जब पहली बार ऐसी ब्रेड बाजार में आई तो लोगों ने उसे हाथों हाथ खरीद लिया। धीरे धीरे ये सुविधा पूरी दुनिया में फैल गई। अंग्रेजी का मशहूर एक मुहावरा है, द ग्रेटेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, भी इसी आविष्कार की लोकप्रियता से जन्मा है। जिसका मतलब होता है किसी बेहद उपयोगी और शानदार चीज की तारीफ करना। कभी कभी छोटी सी सुविधा भी इंसानी जीवन में बड़ा बदलाव कर लेती है ना। स्लाइस ब्रेड इसका बेहतरीन उदाहरण है। चलते हैं सीधे 2007 की ओर, अब जब ताजमहल दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया था आज ही के दिन। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में 7 जुलाई की एक और खास तारीख दर्ज है, साल 2007। इसमें इसी दिन पूरी दुनिया की निगाहें घोषणा पर टिकी थी। करोड़ों लोग की ऑनलाइन और फोन वोटिंग के बाद ताजमहल को दुनिया के न्यू 7 वंडर्स यानी 7 नए अजूबों में शामिल किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस अद्भुत स्मारक का निर्माण कराया था। सफेद संगमरमर से बनी इस बेमिसाल खूबसूरती, नक्काशी और स्थापत्य कला सदियों से दुनिया को आकर्षित करती आ रही। 2007 की इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। इस घोषणा के बाद ताजमहल को देखने आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और भारत की पर्यटन पहचान को नई ऊंचाई मिली। तो ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्रेम, कला और शिल्प कला का ऐसा प्रतीक है जो समय के साथ और भी अमर हो जाता है। 7 जुलाई इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस दिन भारत की एक धरोहर को पूरी दुनिया ने सलाम किया था। तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं एक और, फिर आगे बात करेंगे कि और क्या क्या घटनाएं घटी थी आज के दिन।

इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सुहानी सुबह में, और मैं पापिया हूँ आपके साथ। सुन रहे हैं आप ये कार्यक्रम 100.1 एफएम गोल पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं 1999 की ओर, क्योंकि बात हो रही थी इतिहास में आज के दिन की। 7 जुलाई 1999 जब कैप्टन विक्रम बत्रा का सर्वोच्च बलिदान आज के दिन देखा गया। कुछ तारीखें दोस्तों इतिहास नहीं प्रेरणा बन जाती है, 7 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। साल 1999 कारगिल युद्ध अपने निर्णायक दौर में था। भारतीय सेना दुश्मन की एक छोटी वापस को ले रही थी। इसी दौरान विक्रम बत्रा ने अद्भुत साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। पॉइंट 5140 पर विजय हासिल करने के बाद उनका संदेश ये दिल मांगे मोर पूरे देश के जुबान पर था, लेकिन 7 जुलाई को पॉइंट 4875 पर उनके अपने एक साथी अधिकारी को बचाने की कोशिश करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आज भी उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की नई लौ जला देती है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था कि या तो तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर, लेकिन लौटूंगा जरूर। उन्होंने अपने शब्दों को सच कर दिखाया। 7 जुलाई हमें याद दिलाती है कि देश की आजादी और सुरक्षा के पीछे अनगिनत वीरों का सर्वोच्च बलिदान छिपा है। ऐसे अमर सपूतों को देश हमेशा नमन करता रहेगा। वहीं आज के इतिहास में एक ऐसी इंजीनियरिंग उपलब्धि की कहानी भी छुपी है जिसने रेगिस्तान की तस्वीर ही बदल दी, जो है हूवर डैम के निर्माण की शुरुआत। चलिए इस बारे में विस्तार से जानेंगे, पर सुनेंगे अगला गाना भी।

दोस्तों, जैसा कि कहा कि इंजीनियरिंग उपलब्धि की कहानी आज हम बताएंगे, जो है हूवर डैम के निर्माण की शुरुआत। 7 जुलाई 1930 को अमेरिका के कोलोराडो रिवर पर विशाल हूवर डैम के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। उस समय इसका नाम बोल्डर डैम रखा गया था, जिसे बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने के सम्मान में हूवर डैम कहा जाने लगा। करीब 221 मीटर ऊंचा ये बांध उस दौर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक था। हजारों मजदूरों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। इस बांध ने सिर्फ बिजली ही नहीं बनाई, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था में भी बड़ी भूमिका निभाई। आज भी अमेरिका के कई राज्यों को इसी बांध से बिजली और पानी मिलता है। हूवर डैम ये संदेश देता है कि जब विज्ञान, तकनीक और मानवीय संकल्प एक साथ काम करे तो असंभव दिखने वाले सभी सपने हकीकत भी बन जाते हैं। इसलिए 7 जुलाई इंजीनियरिंग इतिहास के एक महत्वपूर्ण तारीख भी मानी जाती है। वहीं आज ही के दिन 7 जुलाई 1656 को सिखों के आठवें गुरु गुरु हरिकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। आज के इतिहास में बात इस महान व्यक्ति की अगर हम करें, तो जिन्होंने कम उम्र में सेवा, करुणा और मानवता की अद्भुत संदेश दिया। 7 जुलाई 1656 को गुरु हरिकृष्ण का जन्म हुआ। वे सिखों के आठवें गुरु थे और मात्र 5 वर्ष की आयु में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। इतनी छोटी सी उम्र में आध्यात्मिक नेतृत्व संभालना अपने आप में एक अनोखी घटना थी। गुरु हरिकृष्ण साहिब का जीवन हमें बताता है कि महानता उम्र की मोहताज नहीं होती। जब दिल्ली में चेचक और हैजा जैसी महामारी फैली, तब उन्होंने स्वयं बीमार और असहाय लोगों की सेवा की। वे लोगों को पानी पिलाते, उनका हौसला बढ़ाते और मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। कहा जाता है कि उनकी करुणा और सेवा भाव से प्रभावित होकर उन्हें बाला पीर कहकर पुकारा जाता था। उन्होंने जाति, धर्म और ऊंच नीच से ऊपर उठकर हर जरूरतमंद की सहायता की और प्रेम, समानता तथा निस्वार्थ सेवा का संदेश भी दिया। हालांकि उनका जीवन बहुत छोटा रहा, मात्र 8 वर्ष की आयु में वे ज्योति ज्योति में समा गए, लेकिन उनके आदर्श आज भी करोड़ों की प्रेरणा देते हैं। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बगला साहिब उनकी पावन स्मृति से जुड़ा प्रमुख गुरुद्वारा है, जहां आज भी देश विदेश से श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। 7 जुलाई हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता शक्ति या उम्र में नहीं, बल्कि सेवा, दया और मानवता की भाव में होता है। गुरु हरिकृष्ण साहिब जी का जीवन इसी अमूल्य संदेश का प्रतीक है।

वही दोस्तों, आज के दिन यानी कि 7 जुलाई 1854 को स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह का भी जन्मदिन है। 7 जुलाई 1894 को मध्य प्रदेश के भोपाल में मौलाना बरकतुल्लाह का जन्म हुआ। वे भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमत तैयार करने का प्रयास भी किया। मौलाना बरकतुल्लाह लंबे समय तक जापान, अमेरिका, जर्मनी और अफगानिस्तान जैसे देशों में रहे। उन्होंने विदेश में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में बनी भारत की अस्थायी सरकार में उन्होंने प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। इस सरकार का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। वे मानते थे कि आजादी केवल भारत के लोगों की नहीं बल्कि पूरी मानवता की लड़ाई है। अपने लेखों, भाषणों और कूटनीतिक प्रयासों से उन्होंने दुनिया का ध्यान भारत की स्वतंत्रता की ओर आकर्षित किया। 7 जुलाई हमें मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह जैसे उन गुमनाम नायकों को याद करने का अवसर देता है जिनकी दूरदृष्टि, साहस और राष्ट्रभक्ति ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनके योगदान को इतिहास हमेशा सम्मान के साथ याद रखेगा। वहीं आज के दिन जन्मे थे हिंदी साहित्य के अनमोल रचनाकार जिन्होंने कम लिखा लेकिन ऐसा लिखा कि हमेशा के लिए अमर हो गए। 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ। वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, विद्वान, भाषाविद और इतिहास के गहरे अध्येता थे। उनका जन्म जयपुर में हुआ जबकि उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर क्षेत्र से थे। इसी कारण उन्होंने अपने नाम के साथ गुलेरी उपनाम जोड़ा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को सबसे अधिक प्रसिद्धि उनकी कालजयी कहानी उसने कहा था से मिली। वर्ष 1915 में प्रकाशित ये कहानी हिंदी की पहली आधुनिक और मनोवैज्ञानिक कहानियों में गिनी जाती है। प्रेम, त्याग, कर्तव्य और संवेदनाओं को जिस सहजता से उन्होंने शब्द दिए वो आज भी पाठकों के को का दिल छूता है। वे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली और प्राकृत जैसी अनेक भाषाओं के विद्वान थे। इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और भाषा पर उनके लेख आज भी शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और संस्कृति का दर्पण भी है। 7 जुलाई का दिन हमें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साहित्यिक योगदान को नमन करने का अवसर देता है। वही आज के इतिहास में बात उस खिलाड़ी की भी जिसने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी। जी हाँ, करोड़ों दिल की धड़कन, महेंद्र सिंह धोनी। उनका जन्म झारखंड के रांची में हुआ था। साधारण परिवार से आने वाली धोनी ने अपने संघर्ष, मेहनत और शांत स्वभाव के दम पर क्रिकेट की दुनिया में असाधारण मुकाबला हासिल किया। शुरुआत में वे रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी भी कर चुके लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका जुनून उन्हें भारतीय टीम तक ले आया। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज विकेट कीपिंग और बेहतरीन कप्तानी से उन्होंने जल्द ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। धोनी की कप्तानी में भारत 2007 का T20 विश्व कप, 2011 एक दिवसीय विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। वे दुनिया की इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने ICC के तीनों प्रमुख व्हाइट बॉल ट्रॉफियां अपने नाम की है। उनका हेलीकॉप्टर शॉट और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहने का अंदाज आज भी उनकी पहचान है। इसी वजह से उन्हें प्यार से कैप्टन कूल भी कहा जाता है। चूड़ी की घड़ी समय बता रही है 7:52, 7:53 यानी कि होने वाला है, यानी कि समय हमारे सुहाने सुबह का अब ऑलमोस्ट खत्म हो चला है। कोई बात नहीं भाई, साथ तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली मैं आपका, क्योंकि इसके बाद नॉनस्टॉप गपशप FM रेनबो पर मिलूंगी ढेर सारी बातों के साथ, और साथ ही साथ लुआगे उनकी याद भी रहेगी FM गोल पर। बात करेंगे आज नरगिस के बारे में, पर जाते जाते एक और जो खास दिन है आज के दिन जो मनाया जाता है, आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बारे में चलिए बता देते हैं आपको। 7 जुलाई 1955 भारत में पहली बार मनाया गया था वन्य प्राणी दिवस। जी हाँ, आज के इतिहास में ये बात एक ऐसे दिन की है जब प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराया गया। 7 जुलाई 1955 को भारत में

पहली बार वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। उस समय देश में तेजी से घटते वन्य क्षेत्र और शिकार के कारण कई वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था। ऐसे में लोगों को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत की गई। हमारे जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि बाघ, हाथी, गैंडा, शेर, तेंदुआ, हिरन, पक्षी और अनगिनत जीव जंतुओं का घर है। यदि ये जीव सुरक्षित रहेंगे तभी तो प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। यही संदेश वन्य प्राणी दिवस लोगों तक पहुंचाता है। आगे चलकर भारत सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1972 का वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाओं ने देश में बाघों सहित कई दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण को नई दिशा दी। आज भारत दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन वन्य जीवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी भी है। 7 जुलाई हमें ये याद दिलाती है कि धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। यदि हम प्रकृति और वन्य प्राणियों की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर और संतुलित पर्यावरण का आनंद ले सकेंगी। और यही दिवस, यही दिन इसका सबसे बड़ा संदेश है। चलते चलते समय का पता नहीं चला दोस्तों, और हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव में, आखिरी गीत। चलिए आपको सुनाएंगे अभिजीत और अलका यानिक की आवाज में फिल्म यस बॉस से। और जाते जाते बस यही कहूंगी कि बने रहिए हमारे साथ यूं ही, और भगवान करे कि दिन आपका मंगलमय हो, खुश रहें, एकदम मजे में रहें। और मिलते हैं वापस नॉन स्टॉप गपशप में ठीक 10:02 पर, रहेगा एक घंटे का साथ। उसके बाद फिर 11:10 से 11:12 बजे तक मिलेंगे हम लोग आगे उनकी याद में। फिलहाल के लिए जाते जाते आप सभी के लिए अभिजीत एंड अलका यानिक की आवाज़ में यस बॉस से ये गाना, और बने रहिए हमारे साथ यूँ ही। 100.1 FM गोल्ड है ये। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners. We are
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिण

0: छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
2: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं।

0: कैलकुलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने

0: बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की

0: NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in The Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it, while the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 40-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals, including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Gaane Kothay Golden Shomoy. আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold. 100.1 FM Gold. FM Gold.
3: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है. अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान. शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in. जॉइन इंडियन नेवी.
4: कैच द रेन. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
5: जल है तो हम है. आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं. रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं. अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें. जलाशयों से गाद निकालें. अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.

0: हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: মন কাড়া কথা আর মন মাতানো গান শুনছেন মনের মেলোডি 100.1 FM গোল্ডে মনের মেলোডি।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल में श्री बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। इस्लामाबाद द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें मिल रही हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने POJK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने 6ठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघर, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी

0: In another round of 16 clash of the day, defending champions Argentina will take on Egypt in Atlanta tonight. The match will kick off at 9:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में बातचीत जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की आशा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। स्पेन और बेल्जियम फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो इस समय जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया, जो उनके आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन इस्ताना मर्देका में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इस वार्ता से भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
3: India and Indonesia are very close and strategic partners.
4: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
3: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ. जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ. जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा।

0: तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती।
1: जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता तेज हो गई है। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 600 से अधिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी के नेता नमरिन एनखबियार ने भारत समर्थित दोर्नोगोवी तेल शोधन संयंत्र परियोजना के निर्माण में हुई प्रगति की सराहना की है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 1.70 अरब डॉलर की ऋण सीमा के समर्थन से कार्यान्वित की जा रही मंगोल तेल रिफाइनरी परियोजना मंगोलिया की सतत ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण घटक और प्रमुख पहलू है। मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे ने मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति के साथ दोर्नोगोवी स्थित तेल शोधन संयंत्र परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया और इंजीनियर्स इंडिया, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा मंगोल रिफाइनरी के इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत की। दूतावास ने बताया कि मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति ने इस विशाल परियोजना के निर्माण में हुई प्रगति की सराहना की। दूतावास ने कहा कि ये परियोजना भारत मंगोलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी तथा मंगोलिया को सतत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वेनेजुएला में आए 2 भूकंपों से क्षति 37 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है। इस आंकड़े में घरों, व्यवसायों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सुविधाओं सहित इमारतों को हुए नुकसान का लगभग 24 अरब अमरीकी डॉलर और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का 13 अरब अमरीकी डॉलर शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी वेनेजुएला सरकार के समन्वय से भूकंप प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया कि इस आपदा में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। यूनिसेफ ने आपातकालीन टीमें तैनात की हैं और चिकित्सा सामग्री, पानी तथा स्वच्छता उपकरण और आवश्यक घरेलू सामान सहित 68 टन आपूर्ति भेजी है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत ने 184 अंक के साथ उप विजेता का स्थान हासिल किया, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में बेल्जियम ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में स्पेन से खेलेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में बातचीत जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की आशा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। स्पेन और बेल्जियम फीफा फुटबॉल विश्व कप के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा सहयोग, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, कृषि, आपदा प्रबंधन और खनिज तथा इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
1: India and Indonesia are very close and strategic partners.
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्टर से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by VC Pramod.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम 100.1 एफएम गोल्ड पर।
1: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 एफएम गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।
0: और आज लो आ गए उनकी याद में किनको याद करेंगे? याद करेंगे एक्ट्रेस नरगिस को, जो एक नाम नहीं बस एक एहसास रही। और हाँ, बता दो आपको कि फोन लाइंस खुली हुई है, आप चाहे तो कोई भी गाना, उनका जो परफॉर्म किया हुआ गाना है, उनके फिल्मों का गाना आप रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं उनको याद करते हुए। फिलहाल ढेर सारी बातें भी होगी, तो चलिए शुरुआत में ही एक गाना सुन लिया जाए आशा भोसले की आवाज में फिल्म अंदाज से।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की भीड़ में अचानक कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई मुस्कान, कोई मासूम सी नजर, कोई पुराना गीत, और बस दिल बरसों पीछे लौट जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय ने कुछ पल के लिए अपनी रफ्तार रोक दी हो और यादों की एक पुरानी खिड़की धीरे से खुल गई हो। हिंदी सिनेमा भी ऐसी ही अनगिनत यादों का खजाना है। यहाँ कुछ कलाकार आते हैं, कामयाबी पाते हैं और फिर समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हर दौर में उतनी ही गर्मजोशी से याद किए

जाते हैं जितनी मोहब्बत उन्हें अपने समय में मिली थी। उनका अभिनय सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं रहता बल्कि लोगों की जिंदगी और भावनाओं का हिस्सा बन जाता है। आज की महफिल ऐसी ही एक अदाकारा के नाम, एक चेहरा जिसमें मासूमियत थी, गरिमा थी, आत्मविश्वास था, सबसे बढ़कर इंसानियत थी। एक ऐसी कलाकार जिसने हर किरदार को अभिनय नहीं बल्कि जीवन की तरह जिया। आज के इस पेशकश में हम याद कर रहे हैं नरगिस को। सिनेमा के इतिहास में कई अभिनेत्रियां आईं, लेकिन नरगिस की जगह आज भी अलग है। उनकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वो मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे पूरा स्क्रीन रोशन हो गया हो, और जब उनकी आंखें नम होती तो दर्शकों की आंखें भी खुद ब खुद भर जाती। यही तो असली अभिनय है, जहां कलाकार अभिनय करता हुआ दिखाई नहीं देता।

तो ये गीत सुनने के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज की पीढ़ी से पूछा जाए कि पुराने दौर की सबसे असरदार अभिनेत्री कौन थी, तो बहुत से नाम सामने आएंगे, लेकिन जब बात अभिनय की गहराई, भावनाओं की सच्चाई और व्यक्तित्व की गरिमा की हो, तो नरगिस का नाम सबसे ऊपर नजर आता है। उनका जन्म 1 जून 1929 को हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके असली नाम फातिमा राशिद है। उनकी माँ जद्दनबाई उस दौर की मशहूर गायिका, संगीतकार और फिल्म निर्माता थी। उस समय किसी महिला का फिल्मों का निर्माण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, यानी कला का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला था।

कहा जाता है कि बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तो छोटी सी फातिमा स्टूडियो के माहौल को बड़े ध्यान से देखा करती। कैमरे कैसे चलते हैं, कलाकार कैसे अभिनय करते हैं, रोशनी कैसे जलाई जाती है, ये सब उनके लिए किसी खेल से कम नहीं था। शायद तभी अभिनय उनके लिए कभी सीखा हुआ हुनर ही नहीं बना, वो तो उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये छोटी सी बच्ची आगे चलकर भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल देगी। उन दिनों फिल्मों में अभिनय का तरीका बिल्कुल अलग था। संवाद ऊंची आवाज में बोले जाते थे, चेहरे के भाव भी बहुत नाटकीय होते थे, लेकिन जैसे जैसे नरगिस बड़ी हुई, उन्होंने अभिनय को सहज बनाने की कोशिश की। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सादगी। वे कभी जरूरत से ज्यादा अभिनय करती ही नहीं थी। अगर किसी दृश्य में सिर्फ एक नजर काफी था तो वो सिर्फ आंखों से पूरा दृश्य निभा लेती। शायद यही वजह थी कि दर्शकों को लगता था कि वे किसी अभिनेत्री को नहीं बल्कि अपने घर की किसी लड़की को, किसी बहन, किसी बेटी या किसी माँ को देख रहे हैं।

दोस्तों, हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जो उसकी पूरी पहचान बदल देता है। नरेंद्र के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। 1948 में आई थी फिल्म आग। ये वह फिल्म थी जिसमें नरगिस और राज कपूर को पहली बार बड़े स्तर पर देखा गया। उस समय राज कपूर भी अपने सपनों को आकार दे रहे थे, एक युवा निर्देशक, अभिनेता और सिनेमा को लेकर बेहद जुनूनी इंसान। दूसरी तरफ नरगिस थी, जिनकी आंखों में अभिनय के लिए वही जुनून था। जब दो कलाकार अपने काम से इतना प्यार करते हैं तो पर्दे पर जादू होना तो तय ही है, और वही हुआ। इसके बाद दोनों ने एक के बाद एक कई फिल्में एक साथ काम किया। उसके बाद फिर आई फिल्म बरसात, एक ऐसी फिल्म जिसने प्रेम कहानियों का अंदाज ही बदल दिया। बारिश, पहाड़, वायलिन और दो प्रेमियों की मासूम कहानी। आज भी जब पुराने हिंदी सिनेमा में सबसे यादगार पोस्टरों की बात होती है तो बरसात का पोस्टर सबसे पहले याद आता है। राज कपूर के हाथों में वायलिन और उनके कंधे पर झुकी नरगिस, ये तस्वीर सिर्फ एक फिल्म का पोस्टर नहीं थी, वो पूरे दौर की पहचान बन गई। उस दौर के दर्शक थिएटरों में सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते, वे राज कपूर और नरगिस की जोड़ी देखने जाते थे। कई लोगों को लगता था कि ये दोनों कैमरे के सामने अभिनय ही करते बल्कि जीते हैं। दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक थी कि प्रेम के दृश्य बनावटी नहीं लगते। यही वजह है कि दशकों बाद भी उनकी जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है। लेकिन उनके रिश्ते को लेकर जितनी बातें हुई उतनी चुप्पियां भी रही। दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ नहीं कहा। शायद कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से पहचाने जाते हैं, और शायद इसी वजह से आज भी लोग उस दौर को याद करते हुए एक हल्की सी मुस्कान साथ छोड़ देते हैं। वो भी क्या जमाना था।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात, आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
3: और इन बीते हुए लम्हों से हम आज याद कर रहे हैं नरगिस को। दोस्तों, किस्मत कभी कभी इंसान को ऐसी कहानी का हिस्सा बना देती है जिसे लिखने की कल्पना भी कोई लेखक नहीं कर सकता। नरगिस की जिंदगी में भी एक ऐसी कहानी आने वाली थी, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें दुनिया की सबसे महान अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया, एक ऐसा किरदार जिसने अभिनय की सारी परिभाषाएं बदल दी, एक ऐसा सेट जहां सिर्फ इतिहास नहीं बना बल्कि एक नई जिंदगी भी शुरू हुई, और उस फिल्म का नाम था मदर इंडिया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने नरगिस की निजी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस पूरी कहानी के साथ हम लौटेंगे अगले हिस्से में, पर फिलहाल सुन लेते हैं मदर इंडिया का ये गाना।

थी नरगिस। राधा का किरदार निभाना आसान नहीं था, एक युवा अभिनेत्री की किशोरी से लेकर वृद्ध माँ तक का सफर तय करना, चेहरे पर उम्र का जो हाव भाव आते हैं उसके लिए मेकअप लगाया जा सकता था, लेकिन आंखों में अनुभव, आवाज में थकान और दिल में माँ का दर्द लाना सिर्फ अभिनय से ही संभव नहीं था। नरगिस ने ये कर दिखाया। आज भी जब मदर इंडिया देखी जाती है तो कई लोग भूल जाते हैं कि राधा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री उस समय मुश्किल से 28 वर्ष की थी। उनके अभिनय ने उम्र की हर सीमा को पार कर दिया। इस फिल्म के एक दृश्य की चर्चा आज भी होती है, खेत, तपती धूप, कर्ज का बोझ और टूटती हुई उम्मीदें, लेकिन राधा हार नहीं मानती। यही भारतीय नारी की शक्ति है जिसे नरगिस ने अपने अभिनय से अमर कर दिया। फिल्म को दुनिया भर में सराहा गया। ये पहली भारतीय फिल्म बनी जिसे एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन मिला। उस दौर में ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था।

दोस्तों, यादों का ये सफर धीरे धीरे हम उस दौर में ले गया है जिसे हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। वो दौर जब कहानियां दिल से लिखी जाती थी, संवाद आत्मा से निकलते थे और कलाकार अपने किरदारों को सिर्फ निभाते नहीं थे, उनमें जीते थे। नरगिस भी उसी दौर की सबसे चमकदार पहचान थी। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो हर फिल्म में अलग दिखाई देती थी। आज की तरह मेकअप, तकनीक या बड़े बड़े विजुअल इफेक्ट्स नहीं थे, कलाकार की असली ताकत उसके अभिनय था और नरगिस इस कसौटी पर हर बार खड़ी उतरी है। 1949 में एक और यादगार फिल्म आई थी, अंदाज। ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे सोच लेकर आई थी। इसमें नरगिस के साथ दो बड़े सितारे थे, दिलीप कुमार और राज कपूर। उस दौर में दो इतने बड़े अभिनेताओं का एक ही फिल्म में होना अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि फिल्म देखने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस कलाकार की हुई वो थी नरगिस। उन्होंने एक आधुनिक, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र सोच वाली युवती का किरदार निभाया था। उस समय भारतीय समाज बदल रहा था, महिलाओं की भूमिका भी बदल रही थी और ये बदलाव बड़े पर्दे पर भी दिखाई देने लगा था। कई समीक्षकों ने लिखा कि नरगिस ने इस किरदार में ऐसी सहजता दिखाई कि दर्शक खुद को उसे जोड़ने लगे। यही उनकी ताकत थी, वे किरदार को अभिनय नहीं बनाने देती थी, उसे इंसान बनाती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ अगला गाना जो हम सुनेंगे वो होगी फिल्म बरसात की। तो फिलहाल एक वेदर रिपोर्ट हमारे हाथ में आ लगी है, वो है दक्षिण 24 परगना जिले में अगले 11:15 से अगले 2 से 3 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ बादल गरजने के साथ साथ तेज हवाओं का झोंका भी चलेगा जो कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला है। तो जो भी इन जिलों में दक्षिण 24 परगना साउथ 24 परगनास जिलों में रहते हैं, वो जब भी बाहर निकले तो कृपया पूरे एहतियात के साथ छाता, रेनकोट वगैरह सब कुछ ले के निकले ताकि और सुरक्षित रहने की कोशिश करें। चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं अगला गाना।

इन गीतों ने दोस्तों एक बार फिर यादों की डोर को मजबूत कर दिया। अगर कोई एक फिल्म जिसे दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की पहचान बनाए तो वो है आवारा। राज कपूर का निर्देशन, शानदार संगीत, भावनाओं से भरी कहानी और नरगिस का सधा हुआ अभिनय। ये फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सोवियत संघ, चीन, तुर्की और कई देशों में बेहद लोकप्रिय हुई। लाखों लोग राज कपूर और नरगिस को पहचानने लगे। उस समय ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि भारतीय कलाकारों के पोस्टर विदेशों में भी बिक रहे थे। फिल्म का एक दृश्य आज भी लोगों की यादों में ताजा है, बारिश की रात, अदालत और नरगिस की आंखों में अपने प्यार के लिए टूट विश्वास। उन्होंने बिना ऊंची आवाज के, बिना नाटकीय संवादों के सिर्फ अपनी आंखों से इतना कुछ कह दिया कि दर्शक भावुक हो गए। शायद यही वजह है कि अभिनय सीखने वाले छात्र आज भी नरगिस के कई दृश्यों को उदाहरण की तरह देखते हैं। उनका अभिनय सिखाता है कि कैमरे के सामने सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चाई। उस दौर में लोग फिल्मों के संवाद तो दोहराते ही थे, लेकिन नरगिस के चेहरे के भावों की नकल भी करते थे। उनके मुस्कान, उनकी शर्म, उनकी खामोशी, सब कुछ लोगों को अपना सा लगता था। पर हर सफलता कलाकार के जीवन में एक ऐसा समय लेके आता है जब वो सिर्फ स्टार नहीं रहता, एक संस्था बन जाता है। नरगिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

1955 में आई श्री 420 ने नरगिस को नई ऊंचाई दी। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, उस समाज की कहानी थी जहां ईमानदारी और लालच आमने सामने खड़े थे। फिल्म में नरगिस ने एक ऐसी शिक्षिका का किरदार निभाया जो सादगी, ईमानदारी और विश्वास का प्रतीक थी। कहते हैं इस किरदार के लिए उन्होंने अपने हाव भाव तक बदल दिए। वो चाहती थी कि दर्शकों को लगे कि ये कोई अभिनेत्री नहीं बल्कि उनके पड़ोस की एक साधारण लड़की है, और हुआ भी यही। जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने उनके किरदार को बहुत पसंद किया। फिल्म का मशहूर गीत बारिश में भीगते हुए दो प्रेमियों का दृश्य आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत रोमांटिक दृश्यों में गिना जाता है। बारिश छाता और दो दिल, नई पीढ़ियों ने इस दृश्य को देखकर प्यार का मतलब महसूस किया। आज भी जब पुराने फिल्मों की बात होती है तो ये दृश्य जरूर याद किया जाता है। लेकिन सफलता जितनी बाहर दिखाई देती है, कलाकार का जीवन हमेशा उतना आसान नहीं होता। नरगिस लगातार काम कर रही थी, एक फिल्म खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती। स्टूडियो उनकी दूसरी दुनिया बन चुकी थी। फिर भी जो भी उनके साथ काम करता एक बार जरूर कहता कि वे सेट पर सबसे पहले पहुंचती थी। उन्हें समय की बहुत पाबंदी थी, लाइट मैन से लेकर स्पॉट बॉय तक हर किसी से वो सम्मान से बात करती थी। शायद यही वजह थी कि लोग सिर्फ उनकी अदाकारी के नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के भी प्रशंसक थे।

दोस्तों, समय बदल गया है, कैमरे बदल गए हैं, फिल्मों का अंदाज बदल गया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन पर समय का असर नहीं होता। नरगिस उन्हीं नामों में से एक है। जब भी अभिनय की सच्चाई की बात होगी, उनका नाम जरूर लिया जाएगा। जब भी भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों का जिक्र होगा, उनका नाम सम्मान से लिया जाएगा। और जब भी कोई पुरानी श्वेत श्याम फिल्म देखते हुए किसी की आंखें भर आएंगी, कहीं ना कहीं नरगिस की याद जरूर आएगी। उन्होंने हमें सिखाया कि अभिनय सिर्फ संवाद बोलना नहीं होता, बल्कि इंसान की भावनाओं को जीना भी होता है। शायद इसलिए उनकी हर मुस्कान आज भी अपनी और अपनी अपनी सी लगती है, और हर आंसू सच्चा। यादें कभी पुरानी नहीं होती, वे बस किसी गीत, किसी दृश्य या किसी चेहरे के बहाने फिर लौट आती है। और आज की इस महफिल में भी ऐसा हुआ, आज फिर लो आ गई उनकी याद। फिलहाल जाने का वक्त हो चला है हमारा, और अलविदा कहने का वक्त हो चला है हमारा। तो इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और समय, कुछ ऐसे ही फनकारों की, कुछ यादों की बातों को लेकर, जिसे आप अपनी कला से समय को मात दी। फिलहाल के लिए फिर से मिलने का वादा करते हुए मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। मैं पापिया मिलूंगी किसी और दिन, किसी और समय, नए गीतों के साथ और ढेर सारी

फोन कॉल्स पे बातें भी होंगी आपके साथ। फिर फिलहाल के लिए 100.1 FM गोल्ड खरा सोना से टाटा कहते हुए छोड़े जा रही हूँ आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और फिलहाल के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मौसम में अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी

0: विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
1: Aaj

0: का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
0: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
0: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया।

0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: पीएम जय। अब गरीब

0: गरीबों की जाय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाए। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: ओलिविया नर्सिंग होम, ओलिविया नर्सिंग होम दमदम नागिर बाजार। অপারেশন ছাড়াই পাইলস ফিশার ফিস্টুলা ভেরিকোজ ভেইন থেকে সুস্থ হয়ে একদিনে বাড়ি ফিরুন। লেজার পদ্ধতির মাধ্যমে লেজার প্রসিডিউর করছেন প্রখ্যাত সার্জন ডাক্তার প্রসেনজিৎ চৌধুরী। যোগাযোগ 9830468136। আবারও বলি 9830468136। অলিভিয়া নার্সিং হোম।
4: আপনার পছন্দের গান আপনার কানে শুনছেন তোমায় গান শোনাবো, তোমায় গান শোনাবো 100.1 FM গোল্ডে। তোমায় গান শোনাবো, তোমায় গান শোনাবো 100.1 FM।

0: strengthening the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. During talks in Jakarta, the two leaders witnessed the signing of several MOUs covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation, and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food security, and digital technology.
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
0: Mr. Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. He dedicated the award to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
1: Hum development, security, technology, culture aur education har kshetr mein mahatvapurna kadam badha rahe hain. Mujhe vishwas hai आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Mr. Modi said both sides have reached an important understanding to strengthen supply chain resilience in critical minerals and steel. He added that companies from the two countries are beginning new partnerships in stainless steel and rare earth magnets. The Prime Minister said India's Unified Payments Interface, UPI, will soon be integrated with Indonesia's payment system, promoting both ease of doing business and ease of travel.
1: People to people ties हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: Earlier, Prime Minister Modi received a ceremonial welcome at the Istana Merdeka, the presidential palace. Defense Minister Rajnath Singh also congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. In a social media post, Mr. Singh said this exceptional honor is a resounding recognition of Prime Minister Modi's visionary leadership, transformative statesmanship and steadfast commitment to advancing India's national interests. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the conferment of Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor upon Prime Minister Modi is a matter of immense pride for all Indians. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kokje and Sameer Dave

0: हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
0: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
0: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
0: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार ते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
5: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं, और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
6: ओलिविया नर्सिंग होम, ओलिविया नर्सिंग होम दमदम नागिर बाजार। ऑपरेशन छाड़ाई पाइल्स फिशर फिशुला वेरिकोज वेन থেকে সুস্থ হয়ে একদিনে বাড়ি ফিরুন। লেজার পদ্ধতির মাধ্যমে লেজার প্রসিডিউর করছেন প্রখ্যাত সার্জন ডক্টর প্রসেনজিৎ চৌধুরী। যোগাযোগ 9830468136। আবার বলি 9830468136। ওলিভিয়া নার্সিং হোম।
7: কিছু গান কিছু কথা আপনি শুনছেন সুরেলা সফর 100.1 FM গোল্ডে। সুরেলা সফর, সুরেলা সফর, সুরেলা সফরে আজ ডিরেক্টরস কাট, ডিরেক্টরস কাট।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करेंगे। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश

0: को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति ए वाई कोकजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। गुजरात में कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राज्य में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और राज्य के 80 संपर्क मार्ग यातायात के लिए बंद किए हैं। मुंबई मंडल में जलभराव के कारण अहमदाबाद, सूरत, जामनगर और ओखा से चलने वाली कई मुख्य ट्रेनें रद्द की गई है। वही लालकुआ बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस डहाणु रोड पर ही रोक दी गई है। एहतियात के तौर पर सूरत और नवसारी जिलों में आज सभी स्कूल और आंगनवाड़ियां बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 200 फीट बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक के फुटपाथ पर चढ़ने से वहां खड़े 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। फीफा विश्व कप में आज राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia, established in 2018, is entering a new phase of progress. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, he said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security, and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation, and industrial collaboration. Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture, and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
3: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
2: Prime Minister Modi is now at the Indonesian Parliament, where he is addressing the joint session. We take you over live.
3: Salamat siang. Apne sahabat sejati ke beech aakar main bahut hi aanandit hoon। आपके बीच

0: आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के एक भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है।
1: With that we end this news bulletin.
2: কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold, 100.1 FM Gold, FM Gold।
3: সুরেলা সফরে আজ ডিরেক্টর স্কাট, ডিরেক্টর স্কাট।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन
0: जा जा जा जा।
1: सुन सुन सुन।
2: मिस्टर एंड मिसेस 55 के आते जाच्छे एकटू समय लागबे, सेई समयेर मध्ये एकटा छोट्ट बिरति।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: शुरेला शॉप हो रहे आज डायरेक्टर्स कट, डायरेक्टर्स कट।

गलियां ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है।

कहाँ है कहाँ है कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनोमंद बेटे भी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब भारत के 140 करोड़ लोग और इंडोनेशिया के 29 करोड़ लोग साझा प्रगति की दिशा में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो इतिहास रचा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब और देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आज

0: शीर्ष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपील खारिज कर दी। उन्होंने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को भी बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इससे पहले बेल्जियम ने अमरीका को 4-1 और स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच और रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon, highlighting the growing partnership between the two nations. Mr. Modi said, India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
1: The Prime Minister said India and Indonesia are working closely to counter terrorism through the Joint Working Group mechanism. He reaffirmed India's commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific and stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the region. Mr. Modi also said the reforms of the United Nations Security Council can no longer be delayed. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding MOUs aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President Prabowo in Jakarta, Prime Minister Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector.
2: 2018 mein bani hamari comprehensive strategic partnership aaj ek nayi udaan le rahi hai. Hum development, security, technology, culture और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: The two leaders agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia.
2: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को

0: Yes, listeners, you are listening to the group Deep Forest. Deep Forest, the pioneering French electronic world music group formed by musicians Eric Mouquet and Michel Sanchez. And they are famous for creating ethnic electronica, and they are fused in the music indigenous tribal vocals and folk melodies with atmospheric chill out and dance beats. And ladies and gentlemen, they made history by becoming the very, very first French artists to win a Grammy Award. Ladies and gentlemen, we have begun a program, Musical Bandbox, on 100.1 Akashvani FM Gold. But right now it's time for a short break. Stay tuned.
1: Tu aan hai, tu shaan, tu hi desh ka abhiman hai. अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान. शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in. जॉइन इंडियन नेवी.
2: कैच द रेन. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
3: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.
5: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार. देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं. अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार. अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं. और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है.
6: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं. अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई हुए हैं। उन्हें 98% गारंटियां प्रदान की गई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादन मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम की व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा

0: की गई। श्री नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और केरलम के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। केरलम के वायनाड जिले के कलाडी में आज वायनाड सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण स्थल पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं जबकि 7 अन्य लापता हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवा टीमें तैनात की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said, India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said, history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
1: The Prime Minister said India and Indonesia are working closely to counter terrorism through the Joint Working Group mechanism. He reaffirmed India's commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific and stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the region. Prime Minister Modi also expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honour, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia.
2: मैं इंडोनेशिया के लोगों के इस स्नेह को हृदय से नम्रता से स्वीकार करता हूं। यह सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। मैं आप सभी साथियों का, प्रेसिडेंट प्रबोवो जी का, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Both leaders also agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. In Kerala, one person was killed, 7 people were injured and 7 others are missing after a deadly mudslide struck the construction site of the Wayanad Tunnel Road project at Kallade near Meppadi in Wayanad district today. The Kerala State Disaster Management Authority said the collapse occurred when debris accumulated during excavation from the Wayanad Kallade Tunnel construction site slid down following incessant and torrential monsoon rains blocking roads. The Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0, launched in May this year, has crossed more than 4 lakh guarantees, with the guaranteed amount reaching over 1,55,000 crore rupees. The MSMEs have emerged as the biggest beneficiaries of the scheme, with 98% of the guarantees issued going to the sector, while 82% of the total guaranteed amount has also been extended to MSMEs.

100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ई श्रम पोर्टल के बारे में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्वघोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या यानी UAN प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल यानी ई श्रम पर एकीकृत करना शामिल है। यह ई श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचाने और ई श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है। अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 13 योजनाओं को पहले ही ई श्रम के साथ मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानी NFBS। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना और इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। ई श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 7 जनवरी 2025 को भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्य क्षमता शुरू की और इसके लिए फायदा ये हुआ कि अब जो श्रमिक हैं हमारे जो भाई बहन हैं वो 22 भारतीय भाषाओं में ई श्रम पोर्टल के साथ जुड़ सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने वाली महिलाओं के कार्यबल प्रतिशत में सप्ताह दर सप्ताह सुधार हुआ है। आंकड़ों के विश्लेषण से ये जानकारी मिलती है कि घरेलू कार्य से जुड़ा महिला कामगारों का एक बहुत बड़ा

0: हिस्सा स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत करवा रहा है। यह व्यवसाय की वह श्रेणी है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसके अलावा महिलाएं कृषि जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों के रूप में, खाद्य उद्योग में सहायक और मशीन ऑपरेटरों के रूप में, परिधान उद्योग में सहायक और दर्जी के रूप में, तंबाकू बीड़ी रोलिंग की छोटी इकाइयों में और स्वास्थ्य उद्योग में आशा और ANM के रूप में कार्यबल का पर्याप्त अनुपात रखती हैं। इसलिए पोर्टल पर पंजीकरण से होने वाली विभिन्न सुरक्षा योजनाओं के तहत महिलाओं के सबसे कमजोर समूह का बीमा किया जाता है। ई श्रम पोर्टल महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महिलाओं के इस पोर्टल पर सक्रिय रूप से पंजीकरण करने से यह पता चलता है कि वो सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाभ प्राप्त करना चाहती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहती हैं। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हमने बात की ई श्रम पोर्टल के बारे में।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

बिल्कुल सही बात। जिंदगी और क्या ही है, एक प्यार का नगमा ही तो है जिसे हम बस यूं ही गाते गुनगुनाते आगे बढ़े जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, चाय और क्लासिक्स लेकर चयनिका हाजिर है आज एफएम गोल्ड कोलकाता पर। स्टूडियो की घड़ी मुझे ये बता रही है, आपको भी मैं बताऊंगी जो, वो ये कि एकदम सही समय जो है अभी वो है 5:27:55 आपकी घड़ी मिला ले मेरी घड़ी के साथ। और चलिए इस सुरीले सफर पर आगे बढ़ते हैं जहां मैं आपको सुनवाऊंगी कुछ बेहतरीन पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। ये जो वक्त है ना शाम का, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का वक्त है। पूरे दिन भर हमने क्या किया, किस तरह हमारा दिन बीता, उसके बारे में हम सोचते हैं। कौन कौन से काम छूट गए, पूरे नहीं हो पाए, कौन कौन से हो गए, कौन कौन से मिशन पर हमें कामयाबी मिली, ये सारा का सारा जो ये शाम ढलते ढलते हमारे दिमाग में ये ख्यालात उमड़ते रहते हैं जैसे ही हम अपने हाथ में एक चाय का प्याला या एक कॉफ़ी का मग उठाते हैं। और इस समय अगर आपके साथ हम जुड़ जाएं तो ये जो रिफ्लेक्शन का टाइम है या फिर अनवाइंड करने का टाइम है, ये खूबसूरत बन जाता है। अभी भी अगर आप घर नहीं पहुंचे, ऑफिस से बस निकले ही हैं, गाड़ी में हैं, बस में हैं और सुन रहे हैं मेरी आवाज़, तो साथ रखिए मुझे और आगे बढ़िए जिस तरह भी आपका रुख है। और अगर घर पर हैं तो फिर तो क्या ही बात, चाय के साथ सुनिए क्लासिक्स।

चायो क्लासिक सुन रहे हैं आप चैनिका के साथ। 5:33 और 5 सेकेंड फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय। और जो दो गीत मैंने आपको सुनवाए, पहला गाना शोर फिल्म से संतोष आनंद का लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, युगल गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, और दूसरा गीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी पिया का घर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। हर एक दिन अपने अंदर कुछ न कुछ खास छिपाए हुए रहता है, समाये हुए रहता है, और अगर इतिहास की तरफ हम पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि क्या कुछ घटा इस एकदम आम से दिन पर। मतलब मेरे और आपके लिए शायद आज का ये दिन बड़ा ही साधारण सा, एक यूं ही मतलब रूटीन वाला दिन, जैसे रोज दिन आते रहते हैं जाते रहते हैं, ऐसा कोई एक दिन हो सकता है, लेकिन उस दिन में क्या कुछ हुआ अगर हम पीछे मुड़कर देखें, क्या कुछ घटा उस दिन पर इतिहास में, तो कभी कभी अचंभित हो सकते हैं हम। आज के दिन के बारे में अगर बताना चाहूं मैं आपको, तो 1656 में सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन सिंह का जन्म हुआ था। इसके अलावा पता है आपको 1896 में, नानो 1896 में आज ही के दिन फ्रांस के सिनेमाटोग्राफर ल्यूमियर बंधुओं ने बंबई के वॉटसन होटल में पहली बार 6 फिल्में प्रदर्शित की, और आपको टिकट कितने का मिला होगा इस प्रदर्शन को देखने का, कितना पैसा लगा होगा अगर मैं आपको बताऊं तो 1 रुपया एक टिकट का दाम, और उस जमाने में ये एक बड़ी रकम थी। अब सुनकर लगता होगा क्या 1 रुपये में क्या ही होता है, लेकिन उस जमाने में बहुत कुछ होता था। 1999 में आज ही के दिन करगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से मशहूर भारतीय सेना के वीर अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा देश के लिए शहीद हुए थे, और मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चाय और क्लासिक्स में क्लासिक्स का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, और आगे मेरी ऐसी कुछ छुटपुट बातें आपके साथ जुड़ती रहेंगी। इसी तरह बने रहें आप लोग मेरे साथ, ओनली ऑन FM गोल्ड कोलकाता।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चलिए अब जिक्र किया जाए उन खास लोगों का जो आज के दिन मनाते हैं अपना जन्मदिन। सबसे पहले बात करेंगे पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हम सब के चहेते माही यानी इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी की। आज जन्मदिन है पूर्व कप्तान का और ICC की तीनों विश्व प्रतियोगिताएं जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान हैं आप। खेल से संन्यास लेने के बाद भी जिसकी लोकप्रियता टस से मस न हो ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं है और धोनी के बारे में तो मैं क्या ही कहूं। IPL मैचेस के दौरान हमने बार बार देखा है कि दर्शक किस तरह इंतजार में रहते थे कि टॉप ऑर्डर के सारे बल्लेबाज आउट हो जाएं और धोनी क्रीज पर उतरें, क्योंकि उन्हें मैदान में देखने का एक वो जो क्रेज है या फिर कहिए कि जो चाह लोगों के दिलों में हमेशा से बनी रहती थी जब वो खेलते थे देश के लिए, वो जो चाह है वो कभी भी फीकी नहीं पड़ी और उनका जो क्रेज है उनकी प्रति जो लोगों की जो चाहत है वो इसी तरह से बस बुलंद ही रही। नहीं तो कोई चाहता है कि जिसको हम जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर के टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन आउट हो जाएं, लेकिन बस धोनी ही ऐसा कर सकते हैं, इस तरह का करिश्मा उन्हीं के अंदर है। हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा का भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे आपको भी। और समादृत कवि लेखक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित केदारनाथ सिंह की आज जयंती है। इसके अलावा श्रीकांत बोला बोलंट इंडस्ट्रीज के मालिक, एक बेहद प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति हैं, उनका भी आज जन्मदिन है और वो इसलिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध हैं क्योंकि जन्म से दृष्टि बाधित होने के बावजूद MIT से पढ़ाई करने वाले वो पहले अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बाधित छात्र बने थे। और आपकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें मुख्य भूमिका में हमने देखा था राजकुमार राव को। इसके अलावा संगीतकार अनिल विश्वास की आज जयंती है और जन्मदिन है फोक सूफी और पॉप रॉक के मजे हुए कलाकार कैलाश खेर का और साथ ही कांतारा फेम वाले अभिनेता ऋषभ शेट्टी का भी। आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुना जाए। लता मंगेशकर की आवाज है, प्रेम पुजारी फिल्म से नीरज द्वारा लिखा गया यह गीत, संगीतबद्ध किया था सचिन देव बर्मन ने। सुनते रहें, साथ रहें FM गोल्ड कोलकाता।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: और देखते ही देखते ही 5:50 और 4 सेकंड स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय। और इस तरह से हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के चाय और क्लासिक्स के पहले भाग के एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। और आपको मैं याद दिलाऊं, अगर आप नहीं जानते तो बताऊं कि आज है वर्ल्ड चॉकलेट डे। जी, आज पूरी दुनिया में विश्व चॉकलेट दिवस यानी वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जा रहा है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? अरे बाबा, पूरी दुनिया को चॉकलेट के इतिहास के बारे में अवेयर करने के लिए, इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताने के लिए, और इसका जो कल्चरल जो एक कहते हैं ना सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में बताने के लिए इस दिन को, खास दिन को मनाया जाता है। वैसे फरवरी के महीने में भी एक चॉकलेट डे आता है, वो वैलेंटाइंस वीक का हिस्सा होता है। और आज का ये जो दिन है ये एक अलग अवसर है। और चॉकलेट की तो क्या ही फायदे मैं बताऊं, उदास मन है अगर आपका, उसको बूस्ट करना है, खुशियों में मुंह मीठा करना है, या आपके पार्टनर को बजट में कोई एक गिफ्ट देकर इम्प्रेस करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है चॉकलेट। और इसके अलावा कहते हैं कि आपकी जो त्वचा है, आपका जो धड़कता हुआ दिल है और आपका जो तेज़ दिमाग है, उसको अगर सही रखना है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो चॉकलेट जो है वो फर्स्ट क्लास है। यानी हर चीज़ के लिए, इतनी सारी जो मैंने जो चीज़ें जो गिनवाई, इन सभी के लिए एकदम फर्स्ट क्लास है, उपयुक्त रहती है चॉकलेट। छोटे बच्चे हों या मेरे जैसे बूढ़े हों, बड़े हो, चॉकलेट हर उम्र के लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान ले आती है, आपके चेहरे पर भी लाती है, मुझे पता है। और ऐसा माना जाता है कि 1550 के आसपास, 7 जुलाई 1550 के आसपास यूरोप में चॉकलेट का व्यापक प्रसार शुरू हुआ था। और इसी ऐतिहासिक दिन के कारण आज का ये जो दिन है 7 जुलाई, इसको वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में लोकप्रियता मिली। और आज की जो तारीख है, ये चॉकलेट उद्योग, कॉन्फेक्शनरी ब्रांड्स और बेकरी, इसके अलावा चॉकलेट प्रेमियों के लिए एक खास महत्व रखता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि कितनी पुरानी है ये चीज़, तो मायन और एस्टिक सभ्यताओं में सबसे पहले कोको के बीजों के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। उसके बाद, जैसे कि मैंने बताया, यूरोप में पहली बार मॉडर्न चॉकलेट का निर्माण हुआ, और अब तो भाई पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। सच, बहुत लंबा सफर किया है, बहुत लंबा सफर तय किया है आपके फ्रिज में पड़ी उस चॉकलेट ने, तो उसका लुत्फ उठाइए और खुद अकेले मत खाइए, दूसरों के लिए भी बचाइए। सुनते रहे, साथ रहे चाय और क्लासिक्स।
2: वेलकम।

सुन रहे हैं आप चाय और क्लासिक्स चयनिका के साथ। और अब समय हो चला है कि हम आपके साथ ये जो हमारा जो जुड़ाव है, ये लगाव है, इसको थोड़ी देर के लिए रोके और चले जाएं न्यूज ब्रेक की तरफ। उसके बाद 6:20 पर मैं दोबारा लौटूंगी लेकर चाय और क्लासिक्स का दूसरा भाग। चलते चलते आप सबके लिए खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आए दिन बहार के फिल्म से। और संगीतकार हैं इस खूबसूरत से गीत के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार हैं आनंद बख्शी। सुनते रहे, साथ रहें FM Gold कोलकाता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशरा के राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
1: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
2: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, Prime Minister Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector.
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
2: The two leaders agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Prime Minister Modi expressed gratitude for the award and dedicated it to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
1: मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभो का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
2: In Kerala, three people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kalladi in Mepadi, Wayanad, following heavy rainfall today. Nine workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital, Mepadi. Six others remain missing and are feared trapped beneath the debris. Rescue operations are continuing with teams from the fire and rescue services and disaster response agencies. A sub-inspector of police from Mepadi also sustained injuries during the rescue operation and has been admitted to hospital. The Kerala State Disaster Management Authority said the collapse occurred when debris accumulated during the excavation for the tunnel construction site slid down. Work at the site had been suspended on Monday due to incessant rain. Vehicles at the site were also buried in the landslide. Wayanad has been experiencing heavy rainfall since yesterday. A red alert has been issued for Wayanad and Kozhikode districts.

0: In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in round of 16 match in Atalanta tonight. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver. Belgium defeated United States 4-1 in the round of 16 clash in Seattle to secure their place in the quarterfinals of the tournament. Belgium will now face Spain in the quarterfinals at the Los Angeles Stadium on Friday. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम में हम भारत और इंडोनेशिया के संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का विश्लेषण करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वर्ष 2018 में अपनी पहली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। वर्ष 2018 के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय इंडोनेशिया यात्रा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता सहयोग भारत के लिए किस प्रकार अहम है। श्रोताओं, भारत और इंडोनेशिया के संबंध केवल आधुनिक कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें लगभग 2000 वर्षों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों में निहित हैं। हिंद महासागर के समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से भारतीय व्यापारी, विद्वान तथा बौद्ध और हिंदू धर्म के प्रचारक इंडोनेशिया पहुंचे। भारतीय सभ्यता का प्रभाव आज भी इंडोनेशिया की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्य आज भी वहाँ की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भिन्नेका तुंगल इका अर्थात अनेकता में एकता भी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का भी दृढ़ता पूर्वक समर्थन किया। वर्ष 1949 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए और बाद में दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के रूप में स्वतंत्र तथा संतुलित विदेश नीति के समर्थक बने। श्रोताओं, भारत और इंडोनेशिया के संबंध समय के साथ और अधिक व्यापक हुए हैं, लेकिन आखिर दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी किन किन क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है और ये भारत की विदेश नीति में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, आइए विस्तार से समझते हैं।
3: वर्ष 2018 में भारत और इंडोनेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। इसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति मिली। दोनों देश एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। रक्षा और समुद्री सहयोग दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का मजबूत आधार बन चुका है। नियमित रक्षा वार्ताओं, संयुक्त सैन्य अभ्यासों, महासागर विजन तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से दोनों देश अपने सामरिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देश के बीच व्यापार, निवेश, विनिर्माण, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। हजारों वर्षों पुराने सभ्यतागत संबंध आज आधुनिक रणनीतिक सहयोग की मजबूत नींव बन चुके हैं।
2: श्रोताओं, भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अनेक समझौतों और संस्थागत पहलों के माध्यम से भी मजबूती मिली है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए भारत इंडोनेशिया संबंधों पर पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल ने बताया,
4: भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशियन आर्किपेलागो के तो सांस्कृतिक संबंध हजारों साल से हैं। अभी भी अगर हमारे पर्यटक बाली जाते हैं तो पूरा द्वीप हिंदू है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के लोग और समाज और गवर्नमेंट हमेशा इस कनेक्शन को जो भारत के साथ है, संस्कृति का, सिविलाइजेशन का, उसको बहुत ही रेस्पेक्ट

0: करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। रामायण अभी भी बहुत ही एक पॉपुलर डांस ड्रामा के रूप में पूरे इंडोनेशिया में देखा जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा पुराना नाता है और उसको प्रधानमंत्री की यात्रा में और सुदृढ़ किया जाएगा।
1: भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दे रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्रमुख पहलों के बारे में।
2: व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बाद दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ और इंडोनेशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच सहयोग को मजबूत किया। इससे उद्योग जगत और निजी निवेश के बीच संपर्क को नई गति मिली। सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में ताजमहल और इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर के बीच विश्व धरोहर ट्विनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं बाली और उत्तराखंड के बीच सिस्टर प्रोविंस पहल ने दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
3: आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
2: वर्तमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा ने भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा और व्यापक आयाम प्रदान किए। जाकार्ता स्थित इस्ताना मेरिडिका में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने व्यापार, मानव संसाधन विकास, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा उभरती प्रौद्योगिकी सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों उल्लेखनीय गति तथा गहराई आई है।
3: मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
2: यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। इनमें खनिज एवं इस्पात आपूर्ति श्रृंखला, प्रौद्योगिकी, कृषि, समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा, अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, दूरसंचार, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, रेयर अर्थ मैग्नेट विकास तथा ब्रह्मोस एवं वायु से वायु मिसाइल सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े समझौते प्रमुख हैं। इसके अलावा भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आर्किटेक्चर पर आधारित इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क के शुभारंभ, योग्यकार्ता प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु के परिसर की स्थापना तथा गेहूं की उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं।
1: श्रोताओं, भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों का बढ़ता सहयोग है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार, समुद्री संपर्क और ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। आखिर हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए समझते हैं।
4: भारत और इंडोनेशिया दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था के समर्थक हैं। दोनों देश समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडोनेशिया की क्षेत्रीय भूमिका एक दूसरे की पूरक है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के संगम पर स्थित इंडोनेशिया भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क रणनीति का महत्वपूर्ण भागीदार है।
1: श्रोताओं, बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। हजारों वर्षों पुराने सभ्यतागत संबंध आज आधुनिक आर्थिक, सामरिक और तकनीकी सहयोग का आधार बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले वर्षों में ये साझेदारी केवल दोनों देशों के विकास में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

बिल्कुल, दिल ने दिल को पुकारा था, इसीलिए तो हुई थी हमारी मुलाकात, और अब अलग होने का समय आ चला है। लेकिन आपको मैं वादा करती हूँ कि कल दोबारा आपसे मिलने जरूर आऊंगी। चैनिका थी आपके साथ लेकर चाय और क्लासिक्स। और चलते चलते बता दूं कि कौन कौन से ऐसे लोकल इवेंट्स हैं शहर में जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। शेक्सपियर सरणी एल्गिन रोड स्थित एक कैफे में 11 जुलाई से फिंगर पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा सॉल्ट लेक सेक्टर 1 स्थित एक कैफे में 11 जुलाई से ही पॉटरी वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। कलकत्ता पोलो क्लब में इस सोमवार से बॉक्सिंग बूट कैंप शुरू हुआ है और मल्टीपल डेट्स हैं। अगर आप पंच करने के लिए तैयार हैं तो जरूर जाइए, ज्वाइन कीजिए ये बूट कैंप। और फिलहाल अब फाइनली चैनिका कहेगी टाटा बाय बाय, लेकिन आपको रुकना नहीं है क्योंकि आगे अगर आप बढ़ते रहें तो कांटों पर चलकर भी आपको बाहर के साए मिल ही जाएंगे। आप सबके लिए किशोर कुमार, चलते चलते।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे आर्थिक गतिविधियों की और शेयर बाजार पर चर्चा भी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं अर्जुन से हेडलाइंस।
0: Benchmark domestic stock market indices decline, Sensex drops over 100 points, Nifty settles below 24,400. Most Asian stock market indices end in the negative territory, and India and Indonesia exchange MOUs in areas including critical minerals, defense and emerging technologies.
1: घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 100 से अधिक अंक लुढ़का, निफ्टी 24,400 से नीचे बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई और भारत तथा इंडोनेशिया ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Desh ke pramukh शेयर सूचकांक आज अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके और कारोबार के अंत में लाल निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 78,181 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 32 अंक लुढ़क कर 24,399 पर आ गया। दोनों सूचकांकों में 0.1% की गिरावट आई। विस्तृत शेयर बाजार भी नुकसान के साथ बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में 0.3% की सुस्ती देखी गई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% से अधिक की गिरावट आई। बाजार आज अच्छी शुरुआत के साथ खुले थे और सत्र के अधिकांश समय बढ़त के साथ कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के अंतिम घंटे में मुनाफा वसूली और वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेत मिलने से नुकसान देखा गया।
0: Benchmark domestic equity indices gave up the initial gains and ended on a negative note today. Sensex dropped by 104 points to close at 78,181. Nifty dipped by 32 points to settle at 24,399. Both the stock market indices dropped 0.13%. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.3%, while the small-cap 100 index lost more than 0.5%. Earlier, the markets opened on a positive note and traded with gains for most of the session. However, both the stock market indices lost momentum in the final hour of trade, weighed down by profit booking and weak global cues.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में ट्रेंड सर्वाधिक 12.4% के नुकसान में रहा। वहीं अडानी पोर्ट्स में 1.6% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.5% से अधिक की गिरावट आई। उधर अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी के शेयरों में HCL टेक ने 3.1%, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस 2.8% तथा टाइटन ने 2.6% से अधिक का उछाल दर्ज किया।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in negative zone. Among the key laggards, capital goods shed over 1.7%, realty fell 1.6%, and industrials lost 1.5%.

0: खैर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख कर ही एक कंपनी चुननी चाहिए।
1: एक सही समय है ये। हाँ सही समय है ये।
0: देखिए हर समय सही है। इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि इंडिया मार्केट मार्केट लगता है कि अभी बढ़ने वाला है, सारे एनालिस्ट यही कहते हैं, तो ये पोटेंशियल हमारी मार्केट का बहुत ज़्यादा है, असेसमेंट यही चल रही है इस वक्त।
1: और एशियाई बाजारों की हम बात करें तो प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया कोस्पी 4.9% नीचे आ गया, जिसमें चिप शेयरों में बड़ी गिरावट आई। कारोबार के पहले सत्र में कोस्पी 8% से अधिक गिर चुका था। ताइवान का ताइएक्स आज 2.3% लुढ़क गया। वहीं जापान का निक्केई 2.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.2% गिर गया। हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.5% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक ने 1.6% की बढ़त दर्ज की। उधर यूरोपीय बाजार में आज मिला जुला रुख देखा जा रहा है। समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 0.3% और फ्रांस का कैक 0.3% की गिरावट के साथ, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.5% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सुषमा जी, आज दक्षिण कोरिया कोस्पी में जो गिरावट देखी गई, एक बड़ा संकेत इसे माना जा रहा है अन्य मार्केट्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इस गिरावट का असर थोड़ा लंबा जाएगा या बस हाल फिलहाल के लिए कह सकते हैं सही है?
0: तो ये वो मुश्किल कहना है कि वो लंबा जाएगा कि नहीं, पर मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त एआई की जो सारी की जो समझ लीजिए कंफ्यूजन जो है एआई के ऊपर, और एआई खैर चिप्स उनके साथ एआई के साथ बहुत लिंक्ड है, एआई और चिप्स इकट्ठा ही जाता है, तो और साउथ कोरिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्रिटिकल सेंटर है चिप मैन्युफैक्चर के लिए साउथ कोरिया और ताइवान, तो हमें ये मेरे ख्याल में ये लंबा तो मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त का जो कन्फ्यूजन है वो जब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में खैर एआई स्टॉक्स तो इतने बड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो कन्फ्यूजन मैं बात कर रही हूँ चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड इश्यूज अभी भी सुलझाई नहीं गई हैं, अभी भी वो प्रॉब्लम्स हैं कि कौन से चिप्स अमेरिका जाने देगा चाइना तक, और चाइना अपने कर्ब्स अभी भी उन्होंने लगाए हुए हैं, तो ये टेंशन्स अभी चल रही हैं, और ये मेरे ख्याल ये दीज आर सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग टू अदर कंट्रीज।
2: एट साउथ कोरियाज कोरिया एक्सचेंज कोस्पी दैट माय कोएंकर हैज आस्क्ड यू अबाउट इट प्लंज्ड 4.9% एंड दिस इज अ वेरी मार्केट वेयर सैमसंग सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स हैव द रेवेन्यू has exceeded Nvidia's 171 trillion US dollars is the revenue of Samsung in its second quarter. Its net profit has gone up by 19x. How does this happen in a market like Korea, developed country, where there is such a sharp correction?
0: But I don't think we should we must remember that all markets are susceptible to these kind of things, because if there's any bad news, all markets like the Indian market are sentiment driven, and South Korea is no exception. So if there was some kind of perception that there would be some damage to the chip industry, to the chip sector, the problems that they are facing, which I talked about, both Korea, Taiwan, US and China, all this confusion that is going on, and the problems that they are facing. So these are perceptions, and markets are generally sentiment driven. So yes, this can happen. And of course, Samsung, I mean, the profitability that you're talking about is really amazing, even better than Nvidia. For us, Samsung and companies like LG, the way they have entered the Indian markets is also so amazing that we sort of, the Indian consumer more or less thinks of Samsung and LG as Indian companies. They don't think of them as Korean companies. So this is the achievement of the Korean conglomerates. And definitely, as you say, profitability levels are amazing. But every market is sentiment driven, and these things happen everywhere.
2: Let's move on to the U.S. stock market. Major U.S. stock market indices ended in positive territory yesterday, led by gains in technology shares. NASDAQ Composite Index surged 1.1%. S&P 500 gained over 0.7%. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average

0: average rose 0.3% to close at a record high of 53,056. The U.S. economy, their stock markets are being driven by the chip sector.
1: Yes.
0: Manufacturing of chips used by for artificial intelligence and data centers. It's interesting to see that the Dow Jones Industrials average, industrial stocks, apart from technology, have also gone up by 0.3%. Employment rates have also picked up in the U.S. What is the U.S. doing which is so right? Now you have SpaceX and Tesla merger talks being also circulating, which is again hitting the valuation of the Elon Musk driven companies. So what is the U.S. doing which is so right?
1: Well, I think that's a very large question, because the U.S. Has been the biggest economy for so many years. Yes, and I think what you just talked about, SpaceX and all these other AI companies, I mean, you've just listed what the U.S. is doing right is that they have been the cradle or the birthplace of high technology at every level. And whether it is SpaceX and Tesla or Nvidia or chip companies, I mean, they're all based in the U.S. And China has, is coming up very fast as a competitor. But it is the U.S. which has, been this kind of crucible for these kind of companies. And of course, the other thing is that In a situation like a war, the war that has been happening, the U.S. has not been affected because they are an oil exporter. They don't need to worry about availability of oil. They're not going to have a situation like in India that, we may worry about LPG supplies and LNG supplies, because they are an oil exporter. That is one of their big strengths. They have these mineral resources. So mineral resources, as well as being sort of provide the in a supportive environment for innovation and development. I mean, that is, I think, the magic of being in U.S.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में हुई वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, इस्पात और उभरती प्रौद्योगिकी शामिल हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सहमति व्यक्त की है।
3: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली बहुत ही जल्द इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से एकीकृत हो जाएगी। इससे कारोबार करना आसान होगा और यात्रा करने में भी सुविधा होगी। सुषमा, ये इस यात्रा से जुड़े मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आर्थिक दृष्टि से भारत को किस तरह से लाभ मिलने वाला? दूसरा, यूपीआई जो हमारी भुगतान प्रणाली लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, बहुत से देशों के साथ हमारा एक टाई अप हो चुका है इसे लेकर के, अब इसका आप भविष्य कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जो पहला सवाल है कि इसमें जो आर्थिक इसके जो इकोनॉमिक टाई अप जो है इंडोनेशिया के साथ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्रिटिकल मिनरल्स है, कृषि है, स्टील है और नई टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी इसमें आती है। और सबसे बड़ी चीज़ डिफेंस की भी बात कर रहे हैं वहाँ पर। तो इंडोनेशिया के साथ हमारे खैर बहुत पुराने रिलेशंस हैं और बहुत लंबे अरसे से इंडोनेशिया के साथ हैं। और आगे की सबसे बड़ी चीज़ जो आपने दूसरा सवाल था, यूपीआई था, अगर हम यूपीआई के इंटरफेस के साथ हम इंडोनेशिया की पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो एक और देश हमारी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा। यूएई का खैर है ही है, मलेशिया के साथ हो गया है और मेरे ख्याल सिंगापुर के साथ भी बातचीत हो रही है, लेकिन यूएई में मेरे ख्याल आप वहाँ जाके यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हमारा जो इंडिया स्टैक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्नाइज हो रहा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया

0: के संबंध सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक जुड़ाव पर आधारित दीर्घकालिक संबंधों को दर्शाते हैं। जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रदान किया गया सम्मान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है, ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार इस्पात उद्योग के विकास के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गोयल ने आज भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी के साथ इस्पात क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श किया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news shared by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi has said that India's economy is playing a major role in driving global growth. Addressing the Indian community at Jakarta in Indonesia this evening, Mr. Modi said the government is working on the mantra of reform, perform and transform. He asserted that India is a nation with more than a billion dreams in motion and is making rapid strides in sectors ranging from energy and connectivity to semiconductor manufacturing. The Prime

0: में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा समुद्री सुरक्षा व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन

0: संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे MSME के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और

0: माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड़ जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक, कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
4: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास. आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है.
3: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
5: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and common vision for the future. The Prime Minister said India believes in development, peace, stability and prosperity. Mr. Modi stressed the need for collective action against terrorism and unilateral actions that undermine regional security. He emphasized global South stability besides Indo-Pacific. The Prime Minister called for deeper cooperation in defense, maritime security, trade, digital technology, educational, artificial intelligence and critical minerals. He also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Jakarta, Indonesia.
3: The Prime Minister reached Jakarta last evening on the first leg of his three-nation visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Earlier today, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Prime Minister Modi also addressed the Indian community at Jakarta this evening. He said India's economy is playing a major role in driving global growth. He said the government is working on the mantra of reform, perform and transform.
4: Aaj Bharat ki arthavyavastha दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है. जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी. जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं. भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 billion aspirations in motion.
3: The Prime Minister said India's journey towards self-reliance is becoming a multiplying force, not only for Indonesia, but for the entire ASEAN region. He stressed that India and Indonesia share a common vision of development and cannot afford to wait or slow down. Indonesian President Prabowo Subianto, in his address, said he has an Indian DNA. He said the achievements of India, both at the union level and across its states, are truly remarkable, and he closely follows this remarkable journey.
6: I want to admit that I am a great admirer of Narendra Modi ji, and I studied the policies of your Prime Minister, and Prime Minister Modi graciously allowed me to copy his policies. So the important thing is Indonesians must learn from the experience of India. Our civilization, our culture, many hundreds of years strongly influenced by Indian civilization. Our language, what, 50% from Sanskrit?
3: Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलबार

मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। दोनों पक्षों ने सहमत कार्य बिंदुओं के लिए समय सीमा के साथ एक कार्यान्वयन योजना को भी अंतिम रूप दिया। सरकार ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के झूठे दावों के बारे में लोगों को सावधान किया है। ये संगठन दावा कर रहा है कि उसे युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मान्यता मिली हुई है। प्रेस सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा गलत है और

0: साफ किया कि मंत्रालय ने संगठन को कोई मान्यता या संबद्धता नहीं दी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि समग्र स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honour, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, Bangalore, to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his 2-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari chaired a review meeting on the progress of ongoing national highway corridor projects in Bihar and Kerala in New Delhi. During the meeting, Mr. Gadkari reviewed the status of ongoing works and emphasized the importance of timely execution. The Enforcement Directorate conducted searches at five premises.